0: রেডিও আদি খোলা 105.4 আপনি খেয়াল রাখবেন তাই
1: রেডিও আদি খোলা
2: রেডিও আদি খোলা 105.4
3: কফি তো মলাই অসাধ্যই মন পর্ছ তর ভবিষ্যমা কি গর্নে হোলা কুনে রাম্রো ব্যবসায়িক সিপ সিক্ন পাইনি হুন্থ্যো
4: অনি কফিকো তেত্রো শোক ছ ত তেসলে আফ্নো করিয়ার কিন বনাউদৈনল ত সাথী
3: কসরি র কাহা
4: কফি কোপকো এলিট বারিস্টা একাডেমিমা নি যাহা কক্ষাহরু চাঁড়াই শুরু হুদৈছন তিহা তিমিলে এক্সপ্রেসো বনাউনে তরিকা আকর্ষক লট্টে আর্ট র কফি পকাউনে আধুনিক প্রবিধিহরু সজিলাই সিক্ন সক্ছৌ অর্থাৎ কফি প্রতিকো তিম্রো জুনুনলাই ব্যবসায়িক সিপমা বদলনে সহী ঠাউ তেই হুনেছ
3: यो त मलाई चाहिएकै कुरा हो कहाँ छ त यो एकाडेमी
4: एलिट बारिस्टा एकाडेमी कफी कोप द्वारा सञ्चालित छ नि वालिङ आठ जैसी पदरामा
3: अझै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस् सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97050 41 131
4: कफीको उत्कृष्ट स्वाद र बारिस्टा बनाउने उत्तम शुरूआत
5: कहाँ हुनु नि कुखुराको भाले भाले चल्ला लिन हिँडेको हो
6: ओहो मेरो पनि भैँसी बिरामी छ औषधि लिन जान पर्ने छ ल न त सँगै जाम कहाँ हो
5: वालिङ आठ मोडमा भर्खरै खुलेको छ नि गरिमा एग्रो हो त्यही पाइन्छ हिँड त्यही जाम
6: हजुर यहाँ धान मकैको बिउहरू तरकारीका बिउ तथा घाँसका बिउहरू आलु तथा टमाटरमा लाग्ने डढेलोको विषादी तथा भिटामिनहरू पाइन्छ साथै कुखुराको दाना पानीका भाँडाहरू स्पियर तथा कृषि औजारहरू गिरिराजका चल्ला कोइलर तथा ब्रोइलरका कुखुराका दानाहरू गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर कुकुर बिरालालाई लाग्ने रोगको सफल उपचार समेत गरिन्छ
5: यहाँ मौसमी तथा बेमौसमी उन्नत एवं लोकल तरकारी र अन्य बिउ तथा बेर्नाहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
6: मात्र एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोला हजुरको सन्तुष्टि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता
5: प्रोप्राइटर कृष्ण भट्टराई र अस्मिता नेउपाने गरिमा एग्रो वालिङ आठ मोड स्टाफ होटलको आडेमा वालिङ सिटी पो लेखिनेको ठ्याक्कै अगाडि मोबाइल 98560 51068 र 98637771

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।